वाला हूँ हरि हरि वाला हूँ हरि बोलो पति बोलो ईश्वर को माया भजिए भक्ति गरौँ दाजु भाइ खुला गरौँ बाटो यति राम्रो शरीर पनि होइ जान्छ मारो।

0: कच्चा माता कच्चा पिता कच्चा भाई कच्चा श्रीमती कच्चा छोरा
1: छोरा
0: कसो धन सम्पत्ति केही लानु छैन नारायण।

0: दुर्ग प्रसाद सेवापति कानून चौक साहब सुनखानी सिंहशाला सुधा में की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति ले पति चे जाई बिनति कर चिंका पिदरले गुरु देवता राजा रूपन भला मन सका निदान खाली हर बंसन कहुंच ज्योति समान देवी के ही सौगर मन देवत चंगा करिकन मुदंशु द्वारी का हर्षित मिलाता नगर में इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सही स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका में
1: नारायण
0: जन बालक ओ जननो बालक ओ जगमग करने मन चित हरने

नारायण कतो भी भैया का भाने अभी पनी छोड़ा छोड़ा कंसल मारे उड़ा तेर गयो बल्ला बल्ला पाको छोड़े कंसल मारे नारायण

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: Mania, Extreme Energy Drink.
1: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुंग सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz को रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

అంతర్జాతీయ పాలనా గవర్నమెంట్ సమయంలో అధికార సంస్థ అంతర్జాతీయ పాలనా గవర్నమెంట్ సమయంలో అధికార సంస్థ అంతర్జాతీయ పాలనా గవర్నమెంట్ సమయంలో అధికార సంస్థ
পালন আদি নিমিকরণ রক্ষা কাম পরিচ্ছন্ন তথা মিটা দিয়ে নেছ তথা প্রণালী যোজনার বিকাশ ব্যবস্থাপন যুক্ত ছিল তথা আগামী বিকাশ যোজনা শত্রুগড়ার বনে সংস্থায় সার্থক বনাউন সূচনা পদ্ধতির উপযোগ বড়াই তথ্য প্রণালী যোজনা প্রক্রিয়ার বিকাশ ব্যবস্থাপন সুধার করিনে এস নগরপালিকা সঙ্গে সম্বন্ধিত ক্ষেত্র योजना तर्ज में गर्ने संकलित तथ्यांक सूचना आधार लिने नगर योजना को प्रभावकारी कार्यान्वयन का वार्षिक योजना कार्यान्वयन कार्य योजना लागू गरिने नगर का सब योजना को वर्गीकरण नगर स्तरीय अनुगमन समिति ने नतीजा में आधारित भई अनुगमन करने व्यवस्था निभाने अनुगमन बाट दिएका सुझाव को आधार में सुधार करने और अनुगमन प्रतिवेदन का कार्य संपादन को आधार में भुगतानी को प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। योजना कार्यान्वयन को संदर्भ में देखिएका बाधा अवरोध में अनुगमन गरी यथाशीघ्र समाधान गरिने छ। कार्यक्रम आयोजना को आंतरिक र बाह्य पक्ष बाट मूल्यांकन को व्यवस्था मिलाइने छ। योजना को तर्जुमा देखि मर्मत सम्मार सम्म का संपूर्ण चरण सहभागितामूलक बनाइने छ। योजना प्रणाली प्रभावकारी बनाने कार्योजना कार्यपालिका तैयार करी योजना तथा कार्यक्रम को योजना कैलेंडर लागू करिने समझौता करने तर समय में कार्य संपन्न नगर्ने योजना को हक में आगामी हुए सभाबाट संशोधन एवं खारेज करिने उपभोक्ता समिति एवं कंट्रोल सुधार समिति को क्षमता अद्वितीय करना पानी एवं प्रशासनिक व्यवस्थापन करिने साना टुकड़े एवं अखंडा राशि खंडीकरण करते निरुत्साहन गरिने छ। योजना तथा कार्यक्रमलाई स्मार्ट बनाउँदै लगिनेछ। जसले विशिष्ट ठोस योजनालाई समेटिनेछ। योजनाको प्रथमिकता निर्धारण गरी छनौट गरिनेछ। संस्थागत सम्बन्धलाई यस नगरपालिकालाई समृद्ध नगर निर्माणका लागि नगरपालिकाले नेपाल सरकारका आगमनी प्रदेश सरकार अन्तरपालिका भगिनी सम्बन्ध क्षेत्र सहकारी संस्था गैर सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्ध र सहकारीलाई रणनीतिको रूपमा लिइनेछ। यसअघि भगिनी सम्बन्ध स्थापित भएका ललितपुर महानगरपालिका महानगरपालिका जनकपुर महानगरपालिका र नगरपालिकासँगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाइ आपसी असल सम्बन्धको आदान प्रदान गरिनेछ। तिनको सिसुवान प्रान्तको सेन्दु स्थित सिटीसँग भएको भगिनी सम्बन्धलाई प्रगाढ पार्नका लागि दुवै सरकारबीच भएको सम्झौतालाई प्रगाढ रूपमा अगाडि बढाई आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अनुबन्धको आदान प्रदान एवं सहयोगको आदान प्रदान गरिनेछ। साथै अन्य देशका स्थानीय सरकारहरूसँग समेत अनुभव आदान प्रदान मार्फत आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकासका लागि भगिनी सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगिनेछ। नगरको समृद्धि र विकासका लागि विकास संस्थाहरूका विभिन्न सरकारी कार्यालय विभिन्न संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। नगरपालिका र संचार जगतको सम्बन्ध पत्रकार महासंघको क्षमता विकास पूर्वाधार विकास र संचार गृह एवं संस्थाको समन्वय र सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। तिनको सिसुवान प्रान्तको केन्द्रीय सुशीलन सहरसँगको अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गरिनेछ। नगरको समृद्धि र विकासका लागि विकास प्राधिकारका रूपमा रहेका सरकारी कार्य राष्ट्रिय निकाय वयस्य फाउन्डेसनको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम युएसएआईडीको तयार नेपाल परियोजना लगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जाति निकाय सहकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने अन्य जाति निकायहरूलाई सहकारीका लागि आमन्त्रण गरिनेछ। संस्थाका लगानी मैत्री वातावरण बनाइदिएका साझेदारसँग लगानी र सहकारीलाई निरन्तरता दिइनेछ। दिगो विकास लक्ष्यहरूलाई स्थानीयकरण गरे सम्बन्धी नीति कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाई नेपाल सरकारले सन् 2030 सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूलाई हासिल गर्नेतर्फ यस नगरपालिकाका कार्यक्रमहरू परिलक्षित गर्दै लगिनेछन्। अन्तिममा भीमेश्वर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2083-84 तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान गरी सहयोग गर्नुहुने नगर प्रमुख नगर कार्यपालिकाका सदस्य जीवहरू नगर सभाका सदस्य जीवहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी जीवहरू विभिन्न राजनीतिक दल जात्री निकाय एवं विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधि जीवहरू
र अन्य सरकारवाला लगायत सम्पूर्ण नागरिक प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नगर विकासका लागि स्रोत उपलब्ध गराउनु हुने संघीय सरकार प्रदेश सरकार लगायतका अन्य जाति निकाय प्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।

0: Mirudez, Mirudzagadamba Cement.
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: देवरानी लाय बोला वाने पनी देवर वलन ताथमा जेठानी लाय बोला वाने पनी बालोला काथमा घास काटनी कटर सिला के बाटर सिला घर मेरो जान गाँव सिलो के सराव मुर्था परावला भरे
1: अब ती गीत
0: पान्जा परो तिमलाई दिमी दिमी गाम लागेरा गाँव

विश्वनाथ बनारस ऋषिकेश बद्रीनाथ गंगा सागर कलकत्ता जगन्नाथपुरी उड़ीसा तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश लक्ष्मी नारायण गोल्डन टेम्पल बेलरू कन्याकुमारी तमिलनाडु रामेश्वरम द्वारिका गुजरात सोमनाथ ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग साथ ही सब धाम क्षेत्र में रहकर प्रसिद्ध मंदिर दर्शन कराइने यो यात्रा केही स्थानमा बस ट्याक्सी बाहेक बाँकी सम्पूर्ण यात्रा भारतीय रेलको विशिष्ट श्रेणी द्वारा गराइनेछ। अन्य सेवा सुविधा लागत समय सम्पूर्ण जानकारीको लागि विष्णु अधिकारीलाई सम्झनु होला। सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 सादो बाटो चरीकोट दोलाखा।

0: ने आजुरा को ब्याची सावने आई रही चुमा पाने ओरी ओ राजा राजा ने धानी आई उन संसार की निराई ले यो जीवन ऐसा ईशु क्या कथा ना यो घर को पी रही ले ओरी ओ उकाली जान को सबले ते ढूंगो गलां दा गल दाई ना गारा को मंचे ना विजय सामन दाना ही फल दाई ना
1: यो कालो बन्नी वेला गाऊनी
2: शुरू करनी वेला ची की गाई शायद
1: शुरू में से बयाना को झूल के गाम सीता को तोपनी बात इमरो बैठी सावनी आई रे चुम्मा पनी
0: हरी आवानों का चौई पाता पाके को खुर्शानी बागमती दाई अथमाए समझाऊने विरसानी ओरी ओ श्रीराम महेरा सोना को शैली छाती महेरा उठाक ज्ञानपा महेर तो हवल दरवाजे समल को साइनों पां ओरी ओ
1: पहला तो सोपा डंगाऊं थे आज अपने गाऊं थे अब किन्हाने उल मुल्मा अल्बी छिंचे

नमस्कार रेडियो शैल सामुदायिक एफएम बैनी थोप्लो साथ में आज बाट मो बदे प्रसाद साहब कोट आज विक्रम संवत 2083 साल शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन 2026 जून 25 तारीख आषाढ़ 11 गते बिहीबार आज निर्जरा एकादशी को व्रत करने तुलसी को बीव राख्ने दल राख्ने दिन हो। धार्मिक महानुभावहरूले आज एकादशीको व्रत गरेर तुलसीको दल राख्नु होला। अब स्तुति गरौं। आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षेण कल्पै भरी।

राजा नहुस कैसरे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हवस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हवस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हवस सुजनमा मनुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल जफेबाट आको म। एउटौ शंखका पाला भूषित करौ मालस्ती माला दरौ देवौ द्वारौ तिस्मा चानन निलौ नागरी गोवर्धन हो तिरी दक्षे बलि दक्षे।

नारद वंशन ए मुना गायरा शुद्ध वै व्रत वस शक्तिले मधुबान रायराय।